0: ना दूरे ना लम्सा में का लेटो तो दूरे ना मुझे जोस्तो ना चे
1: शिंबा रंग हम जा मचा अरे नौस रंगे नौ हमारे हम जा मचा दोस ने रंगे ने नंग में ले जुए आ ने आजी रंग लाभ जान दो खबरे मोरा शिग निंबू योरी दे